ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैद रखे जनता सा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ा सा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटा सा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए अवरा पे ते मन ला

आस प्यासी सेजे आवा आगे से बावा के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन।

दूर चले गए ता चौधरी सिखां दे गुरधामां दी बेअदबी करके दिल दा साड़ कढ़न लगी। पर खालसा जी, सिख कौम सिदकी परवानियां दी कौम है ते परवाने कदे भी मौत तों डरिया नहीं करदे, अपने प्यार पिछे जान कुर्बान कर देंदे हन ते कुर्बानियां तों बाद इनकलाब आउंदा है। इनकलाब नहीं कदे भी रुक सकदा, ए पता नहीं कदों तरथल पै जाए, अत्याचार सरकारी भी नहीं रहना, ए भी पता नहीं।

तो केलिया के छिलके ही मुंह च पवान लग पे जब सतनाम श्री प्रेम की भुगत ऐसी है, ऐसी लगती है, ऐसी दीवानगी है, वो संसार भुल जाती है, संसार के भोजन भुल जाती है।

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

इस भोजन नाल तुहानू कोई बीमारी नहीं आएगी, वकार खत्म हो जाएंगे। ते इस भोजन छकण वाले नू सतगुरु की कहंदे ने हुण, फिर की होएगा।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरिया भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई। चार पाव दोए सिंह गोंग मुख तब कैसे गुण।